0: Your news from here and hits from home. SBS South Asian.
1: Check.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Urdu on mobile, online and on radio.
1: SBS की उर्दू नशरियात सुनिए मोबाइल ऑनलाइन और रेडियो पर. SBS उर्दू फर्स्ट नेशन बाशिंदों को इस सरजमीन के रवायती मालकान के तौर पर तस्लीम करना चाहता है जहां से हम आज का प्रोग्राम नशर कर रहे हैं. SBS उर्दू इस जमीन के माजी और हाल के वारिसों और उनके आबाओ अजदाद को तस्लीम करने के साथ एबोरिजिनल और टॉरेस आइलैंडर्स को भी यहां के रवायती मालकान के तौर पर तस्लीम करता है.
2: अस्सलामु अलैकुम सामईन, SBS उर्दू की बराह रास्त नशरियात में खुश आमदीद. मैं हूं आपकी मेज़बान वरदा वक़ार और मेरा और आपका साथ है एक घंटा. सुपहर के 3 बज चुके हैं और दिन है आज जुमे का, 26 जून है. और नशरियात में हम क्या कुछ शामिल करेंगे अगर इस पर नज़र डालें तो मुख्तसर ख़बरें आज की नशरियात में हैं, जिसमें हम आपको मुख्तसर अहवाल बताएंगे दुनिया भर में वक़ू पज़ीर हालात व वाक़ियात का. SBS एग्जामिन्स की एक किस्त में जानेंगे कि बलूगत की उम्र तक पहुँचने की क्या कोई वाकई रस्म होती है. आपको स्पोर्ट्स की दुनिया का अहवाल भी सुनाएंगे और यौम आशूर के हवाले से इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब और सूफियाना शायरी भी नशरियात का हिस्सा होगी, जबकि कुछ हमदिया और सूफियाना कलाम भी आज की नशरियात में करेंगे शामिल. लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं मुख्तसर खबरों की तरफ और मिलकर जानते हैं दुनिया भर में आज का दिन कैसा गुजरा है.
1: जल्द ही आपको ऑस्ट्रेलिया में अपने सोशल मीडिया फीड्स पर कम खबरें मिलेंगी, लिहाजा अब वक्त आ गया है कि आप SBS की ऑडियो ऐप डाउनलोड करें. उर्दू सामीन के लिए अहम है कि तमाम खबरें, कहानियाँ, आरा और पॉडकास्ट मिलते रहें ताकि आप ऑस्ट्रेलिया भर की गैर जानबदाराना खबरों के साथ साथ कम्युनिटी से और कम्युनिटी के अहम मसाइल से आगाही हासिल करते रहें. SBS ऑडियो ऐप गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर मुफ्त दस्तियाब है.

0: SBS उर्दू पर पेश है जुमा 26 जून 2026 की मुख्तसर खबरें। वेंसुला के दारुल हुकूमत क्राकस समेत मुल्क के शुमाली हिस्से में आने वाले दो शदीद सलसलों के बाद इलाके के शहरियों के बारे में खदशात सामने आ रहे हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे का अंदाज़ा है कि इस आफत में तकरीबन 10,000 अफराद हलाक हो सकते हैं। हंगामी कारकुनान ने पहले ही कई लोगों को मलबे के नीचे से जिंदा निकाला है, जिनमें सख्त मुतासरा साहिली रियासत लगैरा में दो जख्मी बच्चे भी शामिल हैं। कम से कम 188 अमवात की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 1500 से जायद लोग जख्मी हैं और अब भी सैकड़ों लोग गिरी हुई इमारतों और मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। अक्वामी मुत्तहदा का कहना है कि बहाली में महीनों लग सकते हैं, जबकि बैनुल अक्वामी रेस्क्यू टीम्स जिंदा बच जाने वालों की तलाश में मदद के लिए पहुंच रही हैं। अक्वामी मुत्तहदा के तर्जुमान स्टीफन दुजाक का कहना है कि इसकी मदद तवील मुद्दती होगी। बैनुल अक्वामी इमदाद वेंसुला की कम्युनिटीज तक पहुंचने लगी है, जबकि इमदादी अमला इस हफ्ते की तबाहकुन जलजिलों के बाद मलबे में तलाश जारी रखे हुए है। लगभग 100 से जायद इमारतें शदीद मुतासरा साहिली इलाके में मुनहदिम हो चुकी हैं, जहां बच जाने वालों को अभी भी मलबे से निकाला जा रहा है। इमदादी कारकुन फ्रांसिन डेला रोजा कहती हैं, इमदादी कोशिशें मुतासरा कम्युनिटीज को बराह रास्त मदद पहुंचाने पर मरकूज हैं। उधर ईरानी हुकूमत ने खबरदार किया है कि सिर्फ उन्हीं जहाजों को आबनाए हुरमुज के महफूज गुजरगाह की जमानत दी जाएगी जो इसके मुकर्रर करदा रास्तों के मुताबिक चलेंगी। ईरान की नई कायम करदा पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी ने यह पैगाम सरकारी मीडिया के जरिए जारी किया है। अक्वामे मुत्तहदा की एजेंसी ने बरतानवी फौज की रिपोर्ट के बाद, जो कि उमान के साहिल के करीब एक जहाज पर हमले की इत्तला थी, आबनाए हुरमुज के जरिए जहाजों की निकासी को रात भर के लिए रोक दिया था। हमला आवर और हमले का हदफ अभी तक मालूम नहीं हुआ है। इस हमले की रिपोर्ट के कुछ घंटे बाद ईरान ने धमकी दी कि आबनाए हुरमुज के रास्ते बगैर तेहरान की इजाजत के जहाज नहीं गुजरने चाहिए। मगरबी ऑस्ट्रेलिया के एक सियासतदान ने जवाबदही का मुतालबा किया है, जबकि माइनिंग कंपनी फोर्टेस्क्यू को वफाकी अदालत में एक तबकाती दावे का सामना है, जिसमें दावा किया गया है कि दूर दराज के कानकुनी के मकामात पर कई दहाइयों से खवातीन को जिनसी हिरासानी का सामना है। वफाकी अदालत में दायर किए गए में दावा किया गया है कि खवातीन को काम की जगहों, रिहाइश गाहों में हिरासानी, बदसलूकी और गैर महफूज हालात का सामना करना पड़ रहा है। लिबरल MP लेम्बी मैटम कहती हैं कि ये इल्जामात उस पार्लिमानी तहकीकात से मिलते जुलते हैं जिनकी उन्होंने कानकुनी की सनद पर सदारत की थी। फोर्टेस्क्यू पहले भी कह चुका है कि काम की जगह का तहफ्फुज एक तरजीह है, जबकि VA प्रीमियर कहता है कि सनद में अभी भी बेहतरी के लिए मजीद इकदाम बाकी हैं। उधर पुलिस तहकीक कर रही है कि सिडनी के जनूब मगरिब में एक शख्स को पुलिस अफसरान ने गोली मारकर शदीद जख्मी कर दिया है। हंगामी खिदमात को फेयरफील्ड में कल रात एक यूनिट कॉम्प्लेक्स में एक पुरतशद्दुद हंगामे की इत्तला पर बुलाया गया। पुलिस कहती है 27 साल शख्स अफसरान की तरफ बढ़ा, जिस पर एक कांस्टेबल ने कई गोलियां चलाईं, उसकी छाती और बाजू को जख्मी कर दिया। मस्कूरा शख्स को तश्वीशनाक हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां एक आजादाना तहकीक अब जारी है। उधर तस्मानिया के एक शख्स जिसने घर की क़रक की कोशिश के दौरान एक पुलिस अफसर को कत्ल कर दिया था, आज सजा पाएगा। कांस्टेबल कैथ स्मिथ को गुज़िश्ता साल जून में शुमाली मॉटन की दही जायदाद पर गोली मार दी गई थी। ली जेफरे सोशामेस ने कत्ल और एक और पुलिस अफसर पर संगीन हमले का जुर्म कबूल किया है। अदालत में सुना गया कि सुशामिस एक गाड़ी के पीछे राइफल के साथ झुका था, फिर खड़े होकर 57 साल अफसर को दो बार गोली मारी। इस्तेखासा ने कत्ल को कत्ल के इर्तिकाब से ज्यादा करार दिया है। उधर अल्बनीजी हुकूमत ऐसे नए कवानीन मुतारफ कराने की तैयारी कर रही है जो ऑस्ट्रेलिया के दुनिया के पहले 3 सोशल मीडिया पाबंदी को मजबूत करेंगे। गुज़िश्ता साल दिसंबर से 16 साल से कम उम्र बच्चों को बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट्स बरकरार रखने से रोका गया था। ताहम बहुत से नौजवानों ने रिपोर्ट किया कि वो पाबंदी के आगाज से ही अपने अकाउंट्स तक रसाई हासिल करने में कामयाब रहे। वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बनीजी ने ABC न्यूज चैनल को बताया कि हुकूमत चाहती है कानून किसी भी कानूनी चैलेंज के सामने कायम रह सकें। इधर वफाकी ट्रेजर जिम चार्मर्स कहते हैं कि मजदूर पहले घर खरीदने वाले और आने वाली नस्लें मुतनाज़ा टैक्स इस्लाहात के कानून से फायदा उठा सकेंगी जो हाल ही में पार्लियामेंट से मंजूर मंजूर हुए हैं। नाकदीन ने एक नाम निहाद बेवा टैक्स के मसले को उठाया है जो कैपिटल गेन्स टैक्स में मुजवजा तब्दीलियों से सामने आया, जिसके तहत मुश्तरका मालियत वाली जायदादों से टैक्स छूट खत्म हो जाती है अगर मालिक में से कोई इंतकाल कर जाए या तलाक ले ले। डॉक्टर चार्मर्स कहते हैं इस तरह के और दीगर खदशात को जरूरी तरामीम के जरिए हल किया जा रहा है। सामईन, आप सुन रहे थे SBS उर्दू पर जुमा 26 जून 2026 की मुख्तसर खबरें। जी सामईन, तो खबरें आपने समाप्त की और यहाँ ये याद दहानी ज़रूरी है कि SBS उर्दू की बराह रास्त नशरियात हर बुध और जुमे को ऑस्ट्रेलियन मशरक़ी वक्त के मुताबिक 3:00 SBS साउथ एशियन पर नशर होती है। बुध का प्रोग्राम बुध को ही SBS 2 पर शाम 6:00 और जुमे का प्रोग्राम SBS 2 पर इतवार को शाम 6:00 नशर मुकर्रर के तौर पर पेश किया जाता है। अगर आप ये प्रोग्राम शाम को SBS 2 पर सुन रहे हैं तो कुछ खबरें तब्दील हो सकती हैं। ताज़ा तरीन मालूमात के लिए sbs.com.au/urdu पर जाइए। उसके अलावा SBS उर्दू मौजूद है इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर भी, तलाश किया जा सकता है SBS उर्दू को। SBS साउथ एशिया पर उर्दू प्रोग्राम का इंतखाब कीजिए और अपनी पसंद के पॉडकास्ट अपनी पसंद के औकात में सुनिए। SBS उर्दू की कुछ मुख्तसर दौरानी की वीडियोस आप देख सकते हैं सेलिब्रिटीज़ के साथ और ऐसे लोगों के साथ जो सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं SBS के इंस्टाग्राम पेज पर, जबकि कुछ तवील दौरानिए की वीडियोस आपको मिल सकेंगी यूट्यूब पर। आप हमें ये पैगामात भेज सकते हैं कि SBS उर्दू की नशरियात में कौन से मौजूआत को शामिल किया जाए, कैसे गीत आप पसंद करेंगे और कौन सा सूफियाना कलाम आपके लिए दिलचस्पी का बायस होगा, ऐसी कौन सी मुनफरद कहानियाँ हैं जिनका SBS उर्दू अहाता करे, और इस सब के लिए आप हमें पैगाम भेज सकते हैं SBS उर्दू के फेसबुक पेज पर। इस वक्त हम आपको आते हैं नाते रसूल मकबूल।
1: वाइज कमाल तर्क से मिलती है या मुराद, दुनिया जो छोड़ दी है तो उकबा भी छोड़ दे, तकलीद की रविश से तो बेहतर है खुदकुशी, रास्ता भी ढूंढ खिजर का सौदा भी छोड़ दे।

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Go through because of the effects of invasion. We weren't allowed to speak language. We weren't allowed to do our ceremonies. So back in 2015, after 185 years, we reclaimed this ceremony and it's called Murrum Turukuruk.
4: Yeah, Mandy Nicholson. जो नार्म यानी मेलबोर्न की रवायती निगहबान और जेरी जेरी वुमेन्स डांस ग्रुप की बानी है। उनके मुताबिक माजी में पूरी कम्युनिटी नौजवानों की बालिग जिंदगी में रहनुमाई के अमल में सरगर्म किरदार अदा करती थी।
3: So it's a beautiful ceremony that involves all of the community.
5: What we do in Japan is each city, they get together to celebrate all the people who's turning 20 together.
4: यह है थाई गेसेस। उनके मुताबिक सीएजन नोही अक्सर वो वाहिद मौका होता है जब नौजवान बालिग अफराद किमोनो पहनते हैं।
5: Wearing kimono somehow makes us feel like, I'm Japanese.
6: By the time you reach 12 or 13, you're making a statement to say you're ready, you're willing, and you're able to fulfill your life as a Jew.
4: ये है रबी एलिसन कोनेर, जो टेम्पन बीथ इसराइल की सीनियर रबी है। बिने मित्सवा के एक साल सफर के दौरान यहूदी नौजवान अपने खानदान, दोस्तों और पूरी इबादतगाह के सामने तकरीब के मुख्तलिफ हिस्सों की क़यादत करने की तैयारी करते हैं।
6: It's not easy to get up there in front of people and do all of that, to know that you can overcome obstacles, to know that nothing's perfect.
7: Manhood is it's a loaded term and it has so much cultural or societal baggage with it.
4: अगर से सिन्फी किरदार अक्सर बलूगत की रसूमात से गहरा ताल्लुक रखते हैं, लेकिन डॉक्टर किंग्समैन ने पाया कि बहुत से लड़कों के लिए बालिग होने का तस्वीर मर्दानगी के तस्वीर से ज्यादा वाज़े होता है।
7: When you distill it down, they could talk about adulthood as qualities of being an adult, and when you ask them about manhood, they were confused.
4: उनके मुताबिक जब सिन्फी दख्यानुसी तस्वीरात का दबाव कम किया गया तो नौजवान इस बात पर ज्यादा तवज्जो देने लगे कि वो किस किस्म के बालिग इंसान बनना चाहते हैं। डॉक्टर रोबिन स्टाइन का कहना है कि बलूगत की रसूमात को भी मुआशरे के साथ साथ इर्तका पजीर होना चाहिए।
8: Because everybody's going to become an adult, and it's not exclusive to those who have a particular gender stereotype.
9: Celebration also make the communities more harmonious and cohesive because you are part of the community. Some respect is given to you and also you owe respect to others.
4: Wilfredo के नजदीक एक नौजवान का सफर पूरी कम्युनिटी के इज्तिमाई तजुर्बे का हिस्सा बन जाता है जो समाजी हम आहंगी को मजबूत करता है। रबी एलिसन का कहना है कि जब नौजवान अपनी सकाफत, रिवायत और इकदार को अपनाते हैं तो इसके मुस्बत असरात पूरे मुआशरे में फैलते हैं।
6: We want our Jewish values to fuse, to mesh with the Australian values and to contribute and build and make a beautiful Australian society that we're all proud of.
4: और मैंडी के नजदीक ये तकरीबात इन अकदार को भी अगली नस्ल तक मुंतकिल करती हैं जिन्हें First Nations community महफूज रखना चाहती हैं।
3: It's about them understanding they have to live by those three rules, taking care of self, others and country.
4: अगरचे ये रिवायत मुख्तलिफ सकाफतों और तारीखी पस मंजर से ताल्लुक रखती है लेकिन सब एक ही सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करती है। एक कम्युनिटी नौजवानों को बालिग जिंदगी में दाखिल होने के लिए किस तरह तैयार करती है। डॉक्टर रोबिन स्टाइन का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया के तमाम नौजवान ऐसी रसूमात से फायदा उठा सकते हैं।
8: It's not only beneficial for the young person, it's incredibly beneficial for the entire community.
4: SBS Examines की ये किस्त आपके लिए डेकल न्यू आइजनबर्ग ने पेश की। SBS Japanese, Spanish और SBS Hebrew ने भी इजाफी प्रोडक्शन में मुआवनत फराहम की। उर्दू सामईन के लिए इसे शादी खान सैफ ने पेश किया है।
10: लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तबसरा कीजिए, फेसबुक पर SBS उर्दू फॉलो कीजिए।
11: जी सामईन, तो इसके साथ वक्त हुआ है कि हम लें एक और कमर्शियल ब्रेक, वक्फा, जिसके बाद आपके साथ मिलकर जानेंगे कि सूफियाना शायरी यौम आशूर पर हम आहंगी के लिए कैसे मौजू है। तो SBS उर्दू के साथ रहिए, हम कुछ देर में हाजिर होते हैं।

0: जी सामईन, तो इसके साथ ही नशरियात में तीसरे और आखिरी वक्फे का वक्त हुआ चाहता है। जाने से पहले आपको याद दिलाते चलें कि आप SBS उर्दू के फेसबुक पेज पर किसी भी वक्त हमें पैगाम इरसाल कर सकते हैं और हमें ये बता सकते हैं कि नशरियात में ऐसे कौन से मौजूआत हैं जो आपको पसंद आ रहे हैं और ऐसी कौन सी मुनफरद कहानियाँ हैं जिनका SBS उर्दू को अहाता करना चाहिए। नशरियात में कैसी मौसीकी और कैसा कलाम हम शामिल करें, इस पर भी आप राय दे सकते हैं। या अगर आपके अपने पास आपकी कोई अपनी कहानी है जो आप SBS उर्दू के सामईन को बताना या सुनाना चाहते हैं, तो भी आप हमसे हमारे फेसबुक पेज पर रابطہ कर सकते हैं। तीसरा वक्फा लेते हैं नशरियात में, लेकिन जब हम वापस आएंगे तो जानेंगे कि खेलों की दुनिया में क्या हो रहा है और फुटबॉल के अलावा क्या कुछ है जो मैदान में जारी है। तो SBS उर्दू के साथ रहिए, हम अभी हाजिर होते हैं।
1: Out here, if you're doing nothing, you're doing everything right. Though on a cruise with Norwegian, even if you're doing nothing, you're still basking in the warm sun, enjoying the peaceful ocean waves, you're breathing. Don't forget about breathing. Definitely need to be breathing. So you get to do nothing or everything, but you still need to be breathing. It's like really important.
2: Experience the difference with cruises to Alaska, the Caribbean, and Europe. Norwegian Cruise Line. It's different out here. Visit NCL.com, call your travel advisor, or 1-888-NCL-CRUISE. Norwegian Cruise Line ships registry with Bahamas and USA.
3: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart. Yay, yay.
4: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price, one place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
0: SBS ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड कीजिए और अपने पसंदीदा तमाम प्रोग्राम सुनिए। गूगल प्ले या ऐप स्टोर से SBS ऑडियो ऐप मुफ्त हासिल करें। नशरियात में एक मरतबा फिर खुश आमदेद सामईन, ये SBS उर्दू की नशरियात है जो आप सुन रहे हैं SBS साउथ एशियन पर, और मैं हूं आपकी मेज़बान वरदा वक़ार, जो नशरियात के तीसरे और आखिरी हिस्से में भी आपको खुश आमदेद कहती हूं। सामईन, नशरियात के इस हिस्से में हम कुछ बात करते हैं खेल के मैदान की। खेलों की दुनिया से ताज़ा तरीन तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया और पैरागोए का फुटबॉल का मुकाबला बग़ैर किसी गोल के बराबर रहा है और इस तरह ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट मरहले में शामिल हो गया है, जिसे ग्रुप ऑफ 32 कहा जाता है। फीफा वर्ल्ड कप का मजीद अहवाल, वेमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी और प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान की पेदरपे शिकस्त, इसके अलावा खेल के मैदानों में क्या कुछ हो रहा है, हम सुनेंगे हाफिज बिलाल की स्पोर्ट्स रिपोर्ट में।
5: यकीनी बनाइए कि आपको सिर्फ वो खबरें ना मिलें जो सोशल मीडिया फीड आप तक पहुंचाना चाहता है, बल्कि आपको खबरों के हर जाविये का इल्म हो। हमारी तमाम खबरें और कहानियां जानने के लिए आज ही अपने वेब ब्राउजर पर SBS उर्दू की वेबसाइट को बुकमार्क करें, sbs.com.au/urdu। आप SBS उर्दू के साथ हैं।
6: SBS उर्दू के लिए मैं हूं हाफिज मोहम्मद बिलाल। आज खेलों की खबरों का आगाज करेंगे फीफा वर्ल्ड कप से। जी सामईन, जनूबी अफ्रीका ने जनूबी कोरिया को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1-0 से शिकस्त देकर अपनी तारीख में पहली मर्तबा वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले के लिए क्वालीफाई कर लिया। इब्तदाई दबाव के बाद जनूबी अफ्रीका ने शानदार कमबैक करते हुए मैच पर गिरफ्त मजबूत कर ली और भरपूर जज्बे और जारहाना खेल का मुजाहरा किया। ताहम कई मौके पर उनकी फिनिशिंग मायूस कुन रही। इसके बावजूद मासिको के गोल ने जनूबी अफ्रीका टीम को तारीखी कामयाबी दिला दी। अब अब बात करेंगे आईसीसी वुमन टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के सामने पाकिस्तानी टीम बेबस। जी सामिन, वुमन्स टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वुमन टीम को एक और बड़ा दचका लगा है, जहां ऑस्ट्रेलिया ने एक तरफा मुकाबले के बाद कौमी टीम को 113 रन से शिकस्त दे दी। 199 रन के हदफ के ताकब में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई और पूरी टीम सिर्फ 86 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान की जानिब से बॉलिंग में निशरा सिंधु, रामीन शमीम और सादिया इकबाल ने दो दो विकटें लेकर कुछ मजाहमत दिखाई, मगर ऑस्ट्रेलियाई बैटर के तूफान को रोकना मुमकिन ना हो सका। वाजिया रहे कि पाकिस्तान टीम इवेंट में अब तक कामयाबी से महरूम है।
7: Good at the middle overs, like 7 to 15 overs. So we just need to be more clinical in the fielding and the bowling. I think today's the day we can accept that we have a good fielding side in. So we just carry on that. Just giving the message to the batsmen that they are playing attacking cricket and back yourself and play as straight as they can, because we know the wicket is good and wicket are too helpful for the batters as well. So we just need to be back ourselves. To be honest, it's a very difficult tournament for me as well. But definitely we will try to win the next game, because still there is a hope, so we can. So I think quite similar, because we know they are attacking team and they always try to attack the opponent. And as a bowling unit, we know it, and we just try to execute better plans. So that's why we got the wickets as well in the middle overs. So we just try to give the bowlers chances. So I think it's good that bowlers' response is good. Personally, I thought that they have to accept that they are the good fielders. So they try to give the chance to ourselves, because when the ball's gone to the boundary side and they are just running, they didn't see the fielder. So that's the also main thing. So they have to manage. I think they will improve and they can give this good response.
6: अब बात करेंगे प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान को मुसलसल 14वीं शिकस्त का सामना करना पड़ा। जी सामाइन, FIH प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान की नाकामियों का सिलसिला बरकरार। ग्रीन शर्ट्स को इवेंट में मुसलसल 14वीं शिकस्त का सामना करना पड़ा। लंदन में खेले गए सनसनीखेज मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 2-1 से शिकस्त दी। पाकिस्तान की जानिब से राणा वहीद अशरफ का वाहद गोल भी टीम को नाकामी से ना बचा सका, जबकि इससे कबल रवायती हरीफ भारत के हाथों भी ग्रीन शर्ट्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। SBS से खसूसी गुफ्तगू में क्या कहा, आपको सुनाते हैं।
8: यूरोप टूर किया, जहाँ पे हमने बेल्जियम और स्पेन के साथ दो दो मैच खेले हैं। अभी इंग्लैंड में हम इंडिया और इंग्लैंड के साथ दो दो मैच खेल रहे हैं, और ये प्रो लीग का हिस्सा है। प्रो लीग की 4 लेग्स होती है। इससे पहले जो हमारी टीम है वो अर्जेंटाइन और ऑस्ट्रेलिया में खेल चुकी है, तो ये लास्ट लेग है जो हम इंग्लैंड में खेलेंगे। और डेफिनेटली जैसा कि पहले भी बात हुई कि हमारी जो पाकिस्तान हॉकी टीम है टॉप हॉकी से बहुत अरसे से बाइस थी, तो अभी इन मैचेस के साथ जो गैप्स है वो आइडेंटिफाई हो रहे हैं, जो फिटनेस के लेवल्स हैं वो इम्प्रूव करने का बच्चों को मौका मिल रहा है। बहुत एक्सपीरियंस टीमों के साथ हम खेलने जा रहे हैं, और इससे पहले हम बेल्जियम खेल गए हैं, जैसे हमारे बच्चे तैयारी में हैं, और कल का मैच इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि बहुत अच्छा खेलेंगे और कौम को मायूस नहीं करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा।
6: अब आखिर में बात करेंगे टी20 सीरीज बांग्लादेश को शिकस्त देने के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का जश्न वायरल। जी सामिन, ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को तीसरे और आखिरी टी20 में शिकस्त देकर सीरीज पर 3-0 से क्लीन स्वीप मुकम्मल कर लिया। शेरे बंगला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ट्रॉफी वसूल करने के बाद टिम डेविड का मुनफरद अंदाजे जश्न सबकी तवज्जा का मरकज बन गया, जब वो चमचमाती सबज रंग की मोटरसाइकिल पर साथी खिलाड़ी मैट रेनशा को पीछे बिठाकर मैदान का चक्कर लगाते रहे। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के इस जश्न ने फतह के रंग मजीद गहरे कर दिए और शायकीन के दिल भी जीत लिए।
9: To the team's win, but yeah, I think bouncing back from the other day, wrapping up the series 3-0 is probably what was most important, and trying to bounce back from obviously didn't have a great day a couple of days ago, but happy with how today went. I think coming here in these conditions, it's hot. The wickets can vary so much. We saw that in the ODIs, and we've seen that here. So adapting to the conditions, to walk away with a 3-0 series win, we're very happy with. There's probably a couple of guys that aren't here from the first team. And then the guys that have come in, you see Joel Davies debut, Nikhil Chowdhury debut, and they fitted into the team beautifully. They've performed. Having guys come in and perform straight away is, it's very pleasing to see.
6: SBS Urdu ke liye main hoon Hafiz Mohammad Bilal.
10: Like kijiye, share kijiye, tabsara kijiye. Facebook par SBS Urdu follow kijiye.
0: जी सामीन, स्पोर्ट्स रिपोर्ट आपने सुनी और ये आपके पहले ही इल्म में है कि फीफा वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट स्टेज तक पहुंच चुका है। अब हम आपको ये याद दिलाते चलें कि SBS उर्दू की बराह रास्त नशरियात हर बुध और जुमे को ऑस्ट्रेलियन मशरक़ी वक्त के मुताबिक सुपहर 3 बजे पॉप देसी पर नशर होती है। बुध का प्रोग्राम बुध को ही शाम 6 बजे SBS 2 पर और जुमे का प्रोग्राम SBS 2 पर इतवार को शाम 6 बजे नशर मुकर्रर के तौर पर पेश किया जाता है। अगर आप ये प्रोग्राम शाम को SBS 2 पर सुन रहे हैं तो कुछ खबरें तब्दील हो सकती हैं। ताज़ा मालूमात के लिए sbs.com.au/urdu पर जाइए। उसके अलावा SBS उर्दू इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर भी मौजूद है। SBS साउथ एशिया पर उर्दू प्रोग्राम का इंतखाब कीजिए और अपनी पसंद के पॉडकास्ट अपनी पसंद के औकात में सुनिए। आप SBS उर्दू से राब्ता कर सकते हैं, हमें पैगामात इरसाल कर सकते हैं और हमें अपने पसंदीदा मौजूआत बता सकते हैं SBS उर्दू के फेसबुक पेज के जरिए। SBS उर्दू के फेसबुक पेज पर आपको रोजाना की ताज़ा खबरें भी मिलती हैं मुख्तसर अंदाज में। उसके अलावा कुछ पॉडकास्ट भी हैं जो आपको SBS उर्दू पर मिलेंगे और ऐसे भी रोजाना के मौजूआत हैं जो और कहानियां हैं जो पाकिस्तानी कम्युनिटी या उर्दू बोलने वाली कम्युनिटी से मुतालिक हैं, वो आप सुन सकेंगे SBS उर्दू के फेसबुक पेज के जरिए या SBS उर्दू की वेबसाइट पर भी। और इसके साथ ही नशरियात का वक्त अपने इख्तितामी लम्हात में है। अपनी मेज़बान वरदा वक़ार को दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अगर खुदा लाया तो फिर मिलेंगे। हमारी तरफ से फ़ी अमान अल्लाह, लेकिन जाते जाते आप सुनिए आबदा परवीन का नारा मस्ताना।

SBS पंजाबी दे न्यूज़ रूम तो मैं हाँ शायना काल राते पेश ने 26 जून 2026 दिन शुक्रवार दियां चोणवियां खबरां। माइनिंग दिग्गज फोर्टिस्क्यू उत्ते दोष लगे हन के कंपनी दे दूर दराडे माइनिंग वर्कसाइट्स उत्ते दहाकियां तो जिनसी शोषण चल रहा। इन्हां दोषां दे चलदे कंपनी खिलाफ एक क्लास एक्शन सूट दायर कीता गया, जिस तो बाद हुण पछमी आस्ट्रेलिया दे सियासतदान इस माइनिंग कंपनी तो जवाब मंग रहे ने। संघी अदालत विच दायर मुकदमे विच दोष लगाया गया है कि औरतां नूं वर्कसाइट्स अते रिहायशी पिंडां विच परेशानी, दुर्व्यवहार अते असुरक्षित महसूस करवाया जांदा सी। सिडनी दे दक्षण पछम विच पुलिस अधिकारियां ने एक व्यक्ति नूं गोली मार के गंभीर रूप विच जख्मी कर दिता, जिस तो बाद हुण पुलिस दे आचरण उत्ते वी जांच शुरू हो गई है। हिंसा दियां रिपोर्टां तो बाद बीती रात फेयरफील्ड दे एक यूनिट कॉम्पलैक्स विच एमरजेंसी सेवावां नूं बुलाया गया सी। पुलिस दा कहना है कि एक 27 साला व्यक्ति ने अधिकारियां उत्ते हमला कीता सी। इस तो बाद एक कॉन्स्टेबल ने कई गोलियां चलाईयां, जिस नाल उसनू धड़ अते बांह विच सट लग गई। उधर तस्मानिया विच उस व्यक्ति नू अज सजा सुनाई जावेगी जिसने पिछले साल जून विच पुलिस कॉन्स्टेबल दा कतल कीता सी। ले जेफरी सुशेम्स ने कतल अते एक होर पुलिस अधिकारी उते हमले दा दोष स्वीकार कीता। अल्बनीजी सरकार नवे कानून पेश करन दी तैयारी विच है, जो कि आस्ट्रेलिया दे दुनिया दे पहले सोशल मीडिया बैन नू मजबूत करनगे। पिछले साल दिसंबर तो 16 साल तो घट उम्र दे बच्चियां नू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो वर्जित कीता गया सी, पर बहुत सारे किशोरां ने दावा कीता कि पाबंदी तो बाद भी वो अपना सोशल मीडिया अकाउंट चला पा रहे ने। हुण कुछ अंतरराष्ट्रीय खबरां। शक्तिशाली भूचालां कारण हजारां वेनेजुएला वासियां दे मारे जाण दा खदशा है। US जियोलॉजिकल सर्वे दा अनुमान है कि इस आफत विच घट्टो घट 10,000 लोग अपनी जान गवा चुके ने। एमरजेंसी कर्मचारी पहलां ही दर्जना लोकां नूं मलबे विचों जिंदा कढ चुके ने ते घट्टो घट 188 मौतां दी पुष्टि वी कीती जा चुकी है, जदकि 1500 तों उपर लोग जख्मी हन अते सैकड़े अजे वी ढेरी होई इमारतां दे हेठ दबे होए ने। ईरानी सरकार ने एक चेतावनी जारी की है कि स्टेट ऑफ हॉर्मज विचों सुरक्षित लंघन की गरंटी सिर्फ उन्हां जहाजा लई है जो कि समुद्री रस्ते राही अपने निर्धारित रूटां दी पालना करदे ने। ईरान दी नवी बनी पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी ने सरकारी मलकी वाले मीडिया राही यह संदेश जारी किया। हुण गल भारत दी, जिथे दी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बयान जारी किया कि पासपोर्ट नागरिकता दा प्रमाण नहीं है, सगो यात्रा करन दे लई एक दस्तावेज है। जिक्रयोग है कि इस साल दी शुरुआत विच वोटर सूचियां दे विशेष तीबर सोध, जिसनूं SIR भी कहा जा रहा है, उस उत्ते सुनवाई दौरान भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा सी कि आधार कार्ड भी नागरिकता दा सबूत नहीं है अते सिर्फ पछाण दा एक दस्तावेज है। SIR दे चलदे भारत विच कई लोकां ने ए डर जाहिर कीता कि नवे नियमां अते नवे बदलावां दे तहत माइनोरिटी समूहां नूं भारत दी नागरिकता तो बाहर कीता जा सकदा। हालांकि सरकार ने इन्हां दाव्यां दा खंडन कीता। इस दे नाल ही खत्म हुंदा है खबरां दा अज दा सिलसिला। देश दुनिया अते भाईचारे नाल जुड़ियां खबरां लई सुनदे रहो SBS पंजाबी।

दोस्तों आज दी एक वड्डी खबर फीफा वर्ल्ड कप विच ऑस्ट्रेलियन टीम यानी कि सुक्रोज दा प्रदर्शन भी हैगा है ना ते आओ फिर सिद्धी गल बात करदे आ साडे साथी पुनीत टिंगरा दे नाल ते उना तो जानदे आ कि अज दा फीफा दा मैच किहो जिहा

0: सोकरूज़ ने ग्रुप डी विच दबा हेठ शानदार प्रदर्शन करते हुए नॉकआउट गेड़ विच अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि ग्रुप ई विच इक्वाडोर ने जर्मनी नू हरा के राउंड ऑफ 32 विच प्रवेश कर लिया है। मैं हाँ पुनीत टींगरा अते तुसी सुन रहे हो फीफा वर्ल्ड कप 2026 दे 15वें दिन दे मुकाबलियां दा सारा हाल। पैरागुए विरुद्ध बिना किसी गोल के ड्रा खेडण तो बाद सोकरूज़ ने नॉकआउट पड़ा लई क्वालीफाई कर लिया है। ऑस्ट्रेलियाई कोच टोनी पापोविच ने शुरुआती 11 यानी प्लेइंग 11 विच 6 बदलाव किए अते पहले हाफ विच ऑस्ट्रेलिया के उच्च दबाव वाले खेड ने गोल करन दे भी कई मौके बनाए। पैरागुए की मुख्य रणनीति ऑस्ट्रेलियाई हमले नूं रोकना सी अते उन्होंने मजबूत डिफेंस ने पहले 45 मिनटां तक सोकरूज़ नूं गोल करन तों रोकी रखिया। दूजे हाफ दे विच मुकाबले का रुख बदलिया जदों पैरागुए ने वधेरे हमलावर अंदाज अपनाया, हालांकि कोई भी टीम गोल करन विच कामयाब ना हो सकी अते इह नतीजा ऑस्ट्रेलिया दे हक विच रहा। मैच तो बाद कोच पॉपोविच अपनी टीम दे प्रदर्शन तो काफी खुश नजर आए।
1: Amazing two World Cups in a row, two second places. It shows the kind of steps we've made, but this was the kind of expectation for us. Now we've got to go and do something, you know, no Australian team's done before and win a knockout game. I think the first hour we were really good. Much more positive in the game than the last couple as well, which just gives the boys a good feeling, you know. And really good. Like, listen, at the end of the day, we knew a point was enough. So when the whistle came, we're all happy.
0: ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਗਰੁੱਪ ਜੀ ਦੀ ਉਪਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲਜੀਅਮ, ਮਿਸਰ, ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 3-2 ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ग्रुप ई विच इक्वाडोर ने पिछड़न तो बाद वापसी करदियां 4 वार दी विश्व चैंपियन जर्मनी नू 2-1 नाल हरा के राउंड ऑफ 32 विच अपनी जगह पक्की की थी। हालांकि जर्मनी पहला ही अपने शुरुआती दोवें मैच जीत के ग्रुप विच सिखरला स्थान यकीनी बना चुका सी। उत्थे ही कोडी वा ने क्यूरेसाओ नू 2-0 नाल हरा के ग्रुप विच दूजा स्थान हासिल किया। ग्रुप एफ की गल करिए तां स्वीडन अते जापान विचाले दूजे स्थान लई टक्कर सी अते 1-1 दे ड्रा ने जापान नू अगले गेड विच पहुंचा दिता है। स्वीडन सर्वोत्तम तीजे स्थान ते रहण वालियां टीमां विचों एक वजों अगे वधी है, जदों कि जापान दा सामना हुण राउंड ऑफ 32 विच ब्राज़ील नाल होवेगा। दूजे पासे नीदरलैंड्स ने ट्यूनेशिया नू 3-1 नाल हरा के ग्रुप विच सिखरला स्थान हासिल कीता अते हुण नॉकआउट गेड विच उसदा सामना मोरक्को नाल होवेगा। 16वां दिन भी रोमांचक मुकाबलों नाल भरपूर रहेगा जिथे कुल 6 मैच खेडे जाणगे। ग्रुप आई विच नॉर्वे दा सामना फ्रांस नाल होवेगा जबकि सेनेगल दी टक्कर इराक नाल होवेगी। ग्रुप एच विच उरुग्वे अते स्पेन आमो सामने होणगे जबकि काबो वर्डे दा मुकाबला सऊदी अरबिया दे नाल होवेगा अते ग्रुप जी विच न्यूजीलैंड दा सामना बेल्जियम नाल जबकि मिसर अते ईरान आमो सामने होणगे। तुसी सुन रहे सी फीफा वर्ल्ड कप 2026 दे 15वें दिन दी रोजाना अपडेट। मैं हां पुनीत टिंगरा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 दा हर पल SBS अते SBS ऑन डिमांड ते लाइव अते मुफ्त तुसी वेख सकदे हो।

0: जी हाँ दोस्तों, तुसी फीफा वर्ल्ड कप फॉलो कर रहे हो कि नहीं जरूर दसना। पर अज दा जिहड़ा साडा प्रोग्राम है वह जिवें कि मैं शो दी स्टार्टिंग विच कहा सी, टैक्स स्पैशल है। टैक्स नूं लैके जे तुहाडे भी कोई सवाल होण तुसी पुछ सकदे हो। अज साडे नाल टैक्स माहर शो दे विच मौजूद होणगे। उस तों इलावा अज असीं तुहानूं दसांगे कि जुलाई 1 तों किहड़े किहड़े बदलाव आउण वाले। इन्हां बदलावां बारे तां इस ब्रेक दे उस पार पूरी खास पेशकारी लैके मैं हाज़िर होण ही वाली हाँ। जिवें हुण वेला हो गया जी एक छोटा जिहा वखवा लैण दा। जाते जाते तुहानूं इह वी दस दईए कि फीफा के जिन्ने भी मैच ने फीफा वर्ल्ड कप तुसीं लाइव देख सकते हो SBS टीवी के उत्ते या फिर ऑनलाइन SBS ऑन डिमांड उत्ते। SBS ऑन डिमांड तुसीं टीवी ते लगा सकते हो, फोन ते डाउनलोड भी कर सकते हो ऐप ते। SBS ऑन डिमांड ते SBS पंजाबी दे प्रोग्राम भी मौजूद ने। मिलते हैं जी इस छोटे जे ब्रेक तो बाद।
1: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
3: 1 second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
4: SBS Audio.
5: Apni wavelength naal mail khandiyan taranga sunan layi play button
6: dabo. SBS Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi uplabdh karwata hai.
10: Far from the partisan politics.
5: Nal hi, sat to vat paashama vich khabran vi. ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਡ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। SBS ਆਡੀਓ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਜਾਂ
7: sbs.com.au/audio।
0: ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ SBS ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਇਨਾ ਕਾਲਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ ਟੈਕਸ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਚੱਕਵਾਂ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ।
11: Current, where are you at?
12: ਉੱਤੇ ਦੇਖ

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi mobile, online और radio पर.
2: शुक्रवार 26 जून 2026 का दिन और SBS के हिंदी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आपको अनीता बरार का नमस्कार. सबसे पहले कि आज हम जिस भूमि से इस कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं उसके पारंपरिक उत्तराधिकारियों को स्वीकार करते हैं. SBS हिंदी कुलीन राष्ट्र के वारंजरी लोगों, उनके अतीत और वर्तमान के बुजुर्गों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता है. हम उन सभी मूल निवासियों और टॉरस स्ट्रेट आइलैंड के पारंपरिक उत्तराधिकारियों का भी सम्मान करते हैं जिनकी भूमि से आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं. श्रोताओं, आपके साथ एक पूरे घंटे का साथ है और कोशिश रहेगी कि आपके लिए वो सब हो जिसकी आपको उम्मीद रहती है हमसे और आप हमारे साथ पूरे समय बने भी रहें, अपने संदेश भी भेजते रहें, जो भी अच्छा बुरा लगे हमें बताते भी रहें. और श्रोताओं, बताती चलूं कि कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं एशियो की चेतावनी की. भारत से रिपोर्ट के अलावा बात करेंगे भारत के एक शहर के बारे में जो अक्सर हमें दिखता है फिल्मों में, गानों में. वैसे भारत में कौन सी ऐसी लोकप्रिय जगह हैं जो बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी दिख जाती हैं, जिन्हें आप अक्सर फिल्मों में देखते हैं. बस आप मुझे लिख भेजिएगा 04397997667 पर. और अभी पहले न्यूज़ फ्लैश. नमस्कार, शुक्रवार 26 जून के लिए यह है न्यूज फ्लैश और मैं हूं अनीता बरार. पैराग्वे के खिलाफ मैच के बाद सकुरुज ने वर्ल्ड कप नॉकआउट राउंड में जगह बनाने का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया. सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम में किसी भी टीम ने एक भी गोल नहीं किया. ये तीसरी बार है जब ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के नॉकआउट स्टेज में पहुंचा है और पहली बार ऐसा लगातार टूर्नामेंट में हुआ है. सकुरुज ग्रुप डी में दूसरे स्थान पर हैं. देश भर में लाइव साइट्स फैंस से भरी हुई थीं. वेनेजुएला में सैकड़ों लोग मलबे में फंसे हुए हैं. राजधानी काराकस और उसके आसपास के इलाकों में आए दो जोरदार भूकंपों से तबाही मच गई है. अधिकारियों का कहना है कि कम 188 लोग मारे गए हैं और ये संख्या बढ़ने की उम्मीद है. लगभग 1500 लोग घायल हुए हैं और हजारों लोग लापता बताए गए हैं. प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीसी का कहना है कि उन्हें वेनेजुएला में आए भूकंप के बारे में जानकारी दी गई है. उन्होंने एबीसी को बताया कि प्रभावित लोगों में ऑस्ट्रेलियाई भी शामिल हो सकते हैं और सरकार इस संभावना के लिए तैयारी कर रही है. पार्लियामेंट्री जांच में पता चला है कि पिछले 10 सालों में आदिवासी और टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के खिलाफ नस्लवाद, नफरत और हिंसा बढ़ रही है और इसके रूप बदल रहे हैं और फैल रहे हैं. पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है जब उसकी बुजुर्ग मां वेस्टर्न सिडनी के एक एज्ड केयर होम में मृत मिली. कल रात 25 जून रूटी हिल एज्ड केयर होम पर इमरजेंसी सर्विस को बुलाया गया जहां उन्हें एक 84 साल की महिला की लाश मिली. भारत में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के इस मामले में नामजद सभी 8 आरोपियों को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है. एनडीटीवी से मिले समाचार के अनुसार कल गुरुवार को एफआईआर दर्ज होने के बाद इन सभी को हिरासत में लिया गया था जिसके बाद अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, लवकुश मिश्र, रमाशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव और मनीष यादव पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. इन सभी पर चोरी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक षड्यंत्र समेत विभिन्न आरोपों में भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया है. अयोध्या के राम मंदिर में कथित दान और चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद ट्रस्ट ने विशेष जांच का अनुरोध किया था जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रकरण की जांच के लिए एसआईटी का गठन हुआ था. अन्य समाचारों और समुदाय के समाचारों के लिए आप हमारी फेसबुक और हमारे वेब पेज sbs.com.au/hindi से जुड़े रहें। न्यूज फ्लैश समाप्त हुआ। और श्रोताओं, न्यूज फ्लैश के बाद बात फुटबॉल वर्ल्ड कप की, यानी आज के खेल का लेखा जोखा प्रस्तुत कर रहे हैं नबील हसन।
3: सोकरूज ग्रुप डी में नॉकआउट स्टेज में पहुंच गए हैं, जबकि इक्वेडोर ने ग्रुप ई में जर्मनी को बेहद करीबी मुकाबले में हराकर राउंड ऑफ 32 में जगह बना ली है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के 15वें दिन के डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं नबील हसन। सोकरूज ने पैराग्वे के खिलाफ 0-0 के ड्रॉ के बाद नॉकआउट स्टेज में क्वालिफाई कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया के कोच टोनी पोपोविच ने स्टार्टिंग 11 में 6 बदलाव किए और पहले हाफ में ऑस्ट्रेलिया ने काफी आगे बढ़कर खेलते हुए कई प्रॉमिसिंग मौके बनाए। पैराग्वे की मेन स्ट्रेटेजी ऑस्ट्रेलियन अटैक को रोकना था और उनके डिफेंसिव सेटअप ने पहले 45 मिनट में सोकरूज को काफी फ्रस्ट्रेट किया। दूसरे हाफ में पैराग्वे ने ज्यादा अटैकिंग अप्रोच अपनाई, लेकिन अंत में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी, जिससे ये रिजल्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए फायदेमंद रहा। मिडफील्डर जैक्सन इरविन ने अपनी टीम के प्रदर्शन पर खुशी जताई।
4: Amazing, two World Cups in a row, two second places. It shows the kind of steps we've made, but this was the kind of expectation for us. Now we've got to go and do something, you know, no Australian team's done before and win a knockout game. I think the first hour, we were really good, much more positive in the game than the last couple as well, which just gives the boys a good feeling, you know. And really good. Like, listen, at the end of the day, we knew a point was enough.
3: ऑस्ट्रेलिया अब ग्रुप जी के रनर अप से भिड़ेगा, जिसमें बेल्जियम, इजिप्ट, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और न्यूजीलैंड शामिल हैं। दूसरे ग्रुप मैच में तुर्की ने अमेरिका को 3-2 से हराकर अपने टूर्नामेंट का शानदार अंत किया। दोनों टीमों को मैच से पहले ही अपना रिजल्ट पता था। अमेरिका ने टॉप स्पॉट सिक्योर कर लिया था, जबकि तुर्की पहले ही एलिमिनेट हो चुका था। ग्रुप ई में इक्वेडोर ने स्कोर में पीछे रहने के बाद 4-time वर्ल्ड चैंपियंस जर्मनी को 2-1 से हराया और राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली। जर्मनी ने अपने पहले दो मैच जीत कर पहले ही ग्रुप में टॉप स्थान हासिल कर लिया था। कोट डिवोर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर दूसरे स्थान पर रहते हुए क्वालिफिकेशन हासिल की। ग्रुप एफ में स्वीडन और जापान दूसरे स्थान के लिए मुकाबला कर रहे थे और 1-1 के ड्रॉ ने जापान को ये जगह दिला दी। स्वीडन ने बेस्ट थर्ड प्लेस टीम्स में से एक के रूप में आगे बढ़ने का मौका हासिल किया, जबकि जापान अब राउंड ऑफ 32 में ब्राजील का सामना करेगा। इसी बीच नेदरलैंड्स ने ट्यूनिशिया को 3-1 से हराकर ग्रुप में आराम से पहला स्थान हासिल कर लिया और नॉकआउट स्टेज में मोरक्को के खिलाफ मुकाबला तय किया। कल डे 16 पर 6 मैचेस खेले जाएंगे। ग्रुप आई में नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा, जबकि सेनेगल का सामना इराक से होगा। ग्रुप एच में यूरुग्वे स्पेन से बढ़ेगा और कैबो वर्डे का मुकाबला सऊदी अरेबिया से होगा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड का सामना बेल्जियम से होगा, जबकि इजिप्ट की टक्कर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान से होगी। आप सुन रहे थे फीफा वर्ल्ड कप 2026 के 15वें दिन का वर्ल्ड कप डेली अपडेट। मैं हूं नबील हसन। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के हर पल को SBS और SBS ऑन डिमांड पर लाइव और फ्री देखें।
2: कार्यक्रम के साथ आप जुड़े रहें, अपने संदेश भी भेजते रहें 0439-799-767 पर, और आपसे मिलती हूँ इस अंतराल के बाद।
0: AI is taking over the internet. Made up facts, technology thinking for you. Startpage is the private search engine that still finds what you need without the noise. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
5: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details. You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
6: SBS Audio.
7: अपने मनपसंद ऑडियो को सुनने के लिए प्ले दबाएं.
8: यहीं जाओ दादिया.
9: SBS Chill.
10: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
11: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
12: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
13: Far from the partisan politics.
14: 60 से अधिक भाषा में समाचार के साथ आपके मूड से मेल खाने वाला संगीत और मनोरम पॉडकास्ट आपका इंतजार कर रहे हैं. SBS Audio ऐप डाउनलोड करें या फिर
15: sbs.com.au/audio.
2: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूँ मैं अनीता बरार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में मैं पूछ रही थी कि भारत में कौन सी ऐसी लोकप्रिय जगह हैं जो बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी लोकप्रिय हैं, पॉपुलर हैं, और जिन्हें आप अक्सर फिल्मों में देखते हैं, गानों में देखते हैं। तो बस आप उसके बारे में सोचिए और मुझे लिख भेजिएगा। और अभी बात करते हैं एशियो की तरफ से आई चेतावनी और उन चिंताओं की। एशियो ने बताया है कि दिसंबर में बोंडाई में हुई मास शूटिंग के बाद से 14 टेरर प्लॉट्स को नाकाम किया गया है और अभी भी टेरर का स्तर संभावित है। लेकिन सर्विस अपने वार्निंग सिस्टम का रिव्यू करेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के स्पाई चीफ ने चेतावनी दी है कि अभी भी सिस्टम जनता के सामने आने वाले खतरे को कम करके बता रहा है। एसपीएस हिंदी पर मैं हूं अनीता बरार।
16: When we see autocratic regimes seek to silence dissidents and perceived enemies, we are shocked, but we shouldn't be surprised. When hackers exploit known vulnerabilities to compromise, we are shocked, but we certainly shouldn't be surprised. When anti-Semitism grows after being tolerated and normalized, we are shocked, but we should not be surprised.
2: एजियो के डायरेक्टर जनरल माइक बर्जेस ने अपने सालाना भाषण में ये बात कही है, जो एजेंसी के अभी के आतंकी खतरे यानी टेरर थ्रेट के असेसमेंट का हिस्सा हैं। भाषण से पता चला है कि एजियो ने दिसंबर में बोंडाई में हुई मास शूटिंग के बाद से 14 टेरर प्लॉट्स को नाकाम किया है। नेशनल स्पाई एजेंसी के बॉस का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया का अभी का खतरा संभावित है, जिसका अर्थ है कि अगले 12 महीनों में ऑनशोर अटैक या अटैक प्लानिंग का 50% से अधिक मौका है। लेकिन उनका कहना है कि इससे पूरी कहानी पता नहीं चलती।
16: Next level on the scale is expected, which applies when we have intelligence about a specific attack. We do not. But we do know the environment is degrading and acts of politically motivated violence are becoming more likely than probable suggests.
2: जिस सिक्योरिटी माहौल की वो बात कर रहे हैं, उसमें ऑस्ट्रेलियाई लोगों के ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन का खतरा, विदेशी एंटिटीज का दखल शामिल है। एजियो ने ऑस्ट्रेलिया से मजबूत लिंक वाले दो लोगों की पहचान की है, जिन पर ईरान की तरफ से यहूदी टारगेट पर हमला करने का आरोप है। माइक बर्जेस का कहना है कि ईरान में रहने वाले एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक ने 2024 में बोंडाई में एक बिजनेस पर फायर बॉम्बिंग की साजिश रची थी, और इराक में रहने वाला एक पुराना ऑस्ट्रेलियाई निवासी मेलबर्न के एडास इजराइल सेनेगॉग पर हमले के पीछे था। बर्जेस का कहना है कि दोनों ही ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प से जुड़े थे और एजियो जानता है कि वे कौन हैं, लेकिन उनका नाम नहीं बता सकता क्योंकि जांच जारी है। इंटेलिजेंस रिस्क के सीईओ नील फर्गस, जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड टेररिज्म के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने चैनल 9 के टुडे शो में बताया कि ये हमले विदेशों में हुई ऐसी ही घटनाओं के बाद हुए हैं।
17: If there was a trend, it would be that they're using proxies or criminals to carry out arson attacks against the Jewish Ambulance Service in Golders Green, against the Bank of America in Paris. There's no mass casualty attacks, thank God, involved in that.
18: Yeah.
17: But I think Burgess is correct to say we've got to be absolutely on our guard at the moment.
2: एजीओ की चेतावनी के साथ कि राजनीतिक रूप से मोटिवेटेड हिंसा के कामों की संभावना बढ़ रही है, गृह मामलों के मंत्री टोनी बर्क ने एबीसी रेडियो को बताया कि अभी एक दशक पुराने टेरर थ्रेट वार्निंग सिस्टम का रिव्यू किया जा रहा है.
8: There is a review that's happening on that. That's right. And different countries, particularly our Five Eyes partners, everyone does it a slightly different way, and we're looking at that. The thing that matters is making sure that the Australian people, but also all the law enforcement agencies, get the best possible information.
2: Liberal Senator Jonathan Dunham ka kehna hai ki agar system kaam nahi kar raha to badlao prathamikta honi chahiye.
9: All of these things combined with all of the events that have occurred over the last 12 months, including of course Bondi, are extreme concerns for us as a country. If the legal regimes need revisiting, if the framework around how we deal with terror-related matters need revisiting, then let's do that as a matter of urgency.
2: इस बीच जब ऑस्ट्रेलिया की स्पाई एजेंसी अपनी टेरर थ्रेट गाइडेंस जारी कर रही थी, तो तथाकथित इस्लामिक स्टेट ग्रुप, जो कि एक डेजिनेटेड टेररिस्ट नेटवर्क है, उसके एक सदस्य के पार्टनर को देश में फिर से प्रवेश दे दिया गया. सीरिया में रह रही महिला पर पहले एक टेम्परेरी एक्सक्लूजन ऑर्डर था, जिसे हटा दिया गया ताकि वो घर आ सके. बर्क ने एबीसी रेडियो को बताया है कि महिला के लौटने पर उस पर बहुत उच्च स्तर की निगरानी यानी high level का सर्विलेंस होगा.
8: But we received the final advice yesterday that we can no longer have an exclusion condition any longer for her. We've checked with our agencies, they are ready. So that permit gets issued. What it then means is the conditions that do apply to her are everything that is possible. So, for example, she will have to report and we will have to know where she lives, where she works, where she studies.
2: National Party ke leader Matt Canavan ka kehna hai ki sarkar desh ki raksha aur suraksha ke paksh mein khadi nahi hai.
15: We feel the government should have done more to keep people like this who have associated with terrorist organisations, the world's worst terrorist organisations in the world, they should have been kept out of our country.
2: कल हुई ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट कॉन्फ्रेंस का विषय भी ऑस्ट्रेलियाई जमीन के बाहर से सिक्योरिटी के खतरे थे. इसका विषय था सिक्योरिंग द रीजन फॉर अनसर्टेनिटी. ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस स्टडीज सेंटर के प्रोफेसर पीटर डीन ने क्षेत्रीय सुरक्षा खतरे का सामना करने के लिए एशियो की तैयारी की बात दोहराई है. उनका कहना है कि एक देश के तौर पर आत्मनिर्भरता ही कुंजी है. उन्होंने 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति यानी नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी का जिक्र किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया से इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक्स के लिए यूएस पर निर्भरता खत्म करने की बात कही गई है.
18: That is dead. So what is self-reliance in the face of a major war potential against a major power threat to look like? And as the NDS tells us, it's starting to look like more industrial self-reliance. Yep. It's starting to look like more national resilience and social cohesion. It's starting to look like civil preparedness. It's starting to look like all of these things.
2: जब विशेषज्ञों ने देश की आत्मनिर्भरता बढ़ाने की बात की, तो रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने ऑकस के भविष्य पर अपनी राय दी. यह अमेरिका और ब्रिटेन के साथ एक त्रिपक्षीय रक्षा समझौता है, जिस पर 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे. मास्क का कहना है कि वो इस डील के प्रैक्टिकल होने और भविष्य को लेकर हो रही आलोचना को स्वीकार करते हैं, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्रियों और ASPI यानी ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के पहले प्रमुख की आलोचना भी शामिल है. लेकिन उनका कहना है कि ये डील ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है.
19: In regards to all three countries, we have now seen changes of government in terms of political persuasion in all three, whilst the commitment to AUKUS has been maintained in all three.
2: Lowy Institute ke ek poll ke anusar is deal ko janta ka bhi support hai. Lowy Institute ke survey mein ye bhi paya gaya ki itihas mein pehli baar adhiktar australiyai asurakshit mehsoos kar rahe hain. Lekin चार्ल्स लियोन जोन्स समेत रिसर्चर्स का कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी से काम करने पर भरोसा कम होने के बावजूद लगभग 3/4 जवाब देने वाले ऑस्ट्रेलिया का यूएस के साथ अलायंस का सपोर्ट करते हैं.
20: And what that shows is that Australians remain pragmatic about the global environment we face and understand that world events impact here at home.
2: SBS News के लिए कैमली बियांची और SBS हिंदी के लिए इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया अनीता बरार ने। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे एक रिपोर्ट की एशियो यानी ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन की एक चेतावनी और चिंताओं के बारे में। और जैसा कि मैं पहले बात कर रही थी कार्यक्रम में, आज हम आगे बात करेंगे भारत के एक जाने माने शहर के बारे में जो अक्सर हमें दिखाता है बॉलीवुड, और कभी कभी वो हॉलीवुड में भी दिख जाता है। वैसे भारत की कई ऐसी जगह हैं जो फिल्मों की लोकेशन के लिए लोकप्रिय हैं। कुछ जगह आपको याद आ ही रही होंगी, तो बस क्यों ना आप मुझे लिख भेजें। वैसे हमारे श्रोता राजेंद्र वोहरा जी ने याद किया है मुंबई को, और भी कई जगह हैं, बस याद कीजिए और लिख भेजिए 0439-799-767 पर। और मैं मिलती हूँ आपसे इस अंतराल के बाद।
1: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
21: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart. Yay, yay!
1: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
22: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
23: Hey, good morning.
22: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
23: Yep, they sure are.
22: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
23: It's all right.
22: We're so far up here.
23: Look at me. Take a deep breath.
22: No, I'm good. So good.
24: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
25: क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे Facebook पेज पर। हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी Facebook पर भी है। sbs.com.au/hindi को अपना ऑनलाइन होम बनाइए। ताजा तरीन खबरें अपनी भाषा में पाइए। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
2: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार। श्रोताओं, जैसा कि मैं बात कर ही रही हूं कि आज भारत के एक ऐसे शहर की बात भी करती चलूंगी जो बॉलीवुड फिल्मों में दिखता है या कभी कभी वहाँ पर गाने फिल्माए जाते हैं। और उसी में आपसे भी पूछ रही हूँ कि कुछ खास जगह भारत की ऐसी जो अक्सर फिल्मों में दिखाई देती हैं या कभी आपने देखी हो और आपको बहुत पसंद आ गई हो, तो कोई भी जगह हो सकती है। चलिए, वो तो आप याद करेंगे ही और मुझे आप अपने संदेश भी भेजेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। इससे पहले एक गाना सुनते चलते हैं। अब इस गाने को सुनते चलते हैं और मुझे लग रहा है कि आपको ये फिल्म भी याद होगी, इसके कलाकार भी याद ही होंगे, और सबसे अधिक

0: तो श्रोताओं, याद आया कि ये कौन सी फिल्म है और कलाकार कौन है और इसको कहाँ पर फिल्माया गया, यानी ये गाना अगर शहर नहीं तो भारत के कौन से राज्य में इस गाने को फिल्माया गया था। तो मुझे आप इसके बारे में लिखिएगा। और आइए चलते हैं भारत की ही ओर, हमारे संवाददाता विश्व रत्न के साथ भारत की ये रिपोर्ट।
1: अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी और चोरी के मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से पुलिस में दर्ज शिकायत में 8 लोगों को नामजद किया गया है। हालांकि चंपत राय जैसे बड़े नामों का उल्लेख इस FIR में नहीं है। ट्रस्ट के महासचिव होने के चलते चंपत राय की भूमिका को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष ने पूरे मामले पर लीपापोती का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की बात दोहराई है। इस मामले में समाजवादी पार्टी की बयानबाजी की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा,
2: प्रभु रामलला हम सबकी आस्था के केंद्र हैं और आस्था के केंद्र पर लगातार उस विभाग की बयानबाजी करना, जहां आज तक आप दर्शन करने की हिमाकत भी नहीं कर पाए हो, क्योंकि आपको पता है जब भी आप दर्शन करने जाएंगे अयोध्या धाम में आपका जो तुष्टिकरण का फार्मूला है फेल हो जाएगा, जो इसकी जनता अच्छी तरह सब समझती है। जो भी दोषी होगा उसमें बचेगा नहीं, प्रभु रामलला की नजरों से कोई नहीं बचेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी को, अपनी अंतरात्मा पर एक बार जरूर सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि देश प्रदेश जनता क्या चाहती
1: है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस गड़बड़ी की जांच कर रही SIT को कुछ सबूत दिए हैं। उन्होंने इसकी जानकारी मीडिया को देते हुए कहा,
3: SIT को मैंने जो कागजात सौंपे हैं 11 दस्तावेज के सेट सौंपे हैं, जिसमें 2 दस्तावेज एक साथ जुड़े हुए हैं, उससे संबंधित कागजात दिए हैं और जांच करने के लिए कहा है। मुझे लगता है जिस तरह से उन्होंने आश्वस्त किया इस पर कार्रवाई करेंगे।
1: भारतीय जनता पार्टी ने 1975 में लागू आपातकाल को याद करके कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। गुरुवार को आपातकाल की 91वीं वर्षगांठ पर इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में भाजपा ने मनाया। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने आपातकाल को याद रखने का कारण बताते हुए कहा,
4: आज हम इसलिए याद करते हैं कि भारत का प्रजातंत्र जिस मजबूती के साथ उस समय प्रजातंत्र का गला घोटने वाले को जवाब दिया था, यह प्रजातंत्र भारत का हमेशा हमेशा मजबूत रहे और इसको कोई आंच ना आए, इसकी हम प्रतिज्ञा भी करते हैं। और इसका यह उदाहरण है आने वाली सरकारों के लिए, आने वाली जमहूरियत के लिए, कि इस तरीके का दुस्साहस करने वालों का हश्र क्या होता है।
1: भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने आपातकाल को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए कहा,
5: संसद के साथ जो बदसलूकी की गई, 5 साल का 6 साल विपक्ष जेल में मनमानी तरीके से कानून बन रहा है और संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। What I am saying, all the shades of democracy were murdered during emergency. सारे संवैधानिक संस्थाओं की हत्या की गई उस समय।
1: तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कुर्सी बचाने के लिए आपातकाल लागू किया गया था, ऐसा रविशंकर प्रसाद का कहना है।
5: इंदिरा गांधी का इलेक्शन रायबरेली से सेट असाइड हो गया इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। इंदिरा जी सुप्रीम कोर्ट आई उसके खिलाफ, उनको स्टे नहीं मिला। यही कहा गया, आप सदन में आ सकती हैं लेकिन बोलेंगी नहीं। ये जब वाकया हुआ तब इंदिरा गांधी को बचाने की कोशिश हुई और उसी बचाने की कोशिश में इमरजेंसी का दुरुपयोग किया गया। तो पहली बात ये ध्यान रखिए, विपक्ष का विरोध, देश को तोड़ने की बात, ये सब बिल्कुल बेबुनियाद है। इमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ लगाई गई इंदिरा गांधी की कुर्सी बचाने के लिए।
1: आपातकाल को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। NCERT की किताब में एक अध्याय इसी पर जोड़ा गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे सही कदम बताया है।
6: ये तो सही बात ना, NCERT ने सही किया है, इमरजेंसी जैसे काले कारनामे को देश को भविष्य के पीढ़ी जाने पढ़े समझे ऐसे दोबारा स्थिति ना आए, इसलिए एनसीईआरटी ने उसको विषय में लाए।
1: कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के इस रवैये की आलोचना की है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं,
7: ये मैंने देखा है कि जब भी सरकार भाजपा की होती है किसी राज्य में या देश में, तो पहला काम वो क्या करते हैं, किताब इतिहास साहित्य को अपने तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। वो भाजपा की सरकार का अपना एक ध्येय हो सकता है, लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि हमें आगे देखना पड़ेगा। और आज जो चुनौती लोकतंत्र को है, आज़ाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं मिली, जिस प्रकार दुरुपयोग कर आवाज़ को दबाया जा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे मीडिया हो, चाहे जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, निर्वाचन आयोग, कोई संस्था हो, जिस तरह का दुरुपयोग कर अपने हितों को साधने की कोशिश ये सरकार कर रही है, आज से पहले कभी नहीं हुआ।
1: कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आज के दौर को आपातकाल बताया।
8: अंग्रेजी हमारी सरकार 2014 से लेकर और 2029 तक जो इमरजेंसी हुई है, देखते हैं हम भी कितना ये बचेंगे फिर उससे।
1: कांग्रेस पार्टी परीक्षाओं की गड़बड़ी और छात्रों की समस्या को लेकर आंदोलन छेड़ने जा रही है। गुरुवार को 28 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीट परीक्षा और छात्रों की समस्या को लेकर सरकार को घेरा गया। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का कहना है कि पार्टी छात्रों की आवाज को सड़क से लेकर संसद तक उठाएगी।
9: कांग्रेस पार्टी ने इस देश भर के विद्यार्थियों की आवाज को सुनने के और वो जो लगातार सड़कों पर हैं आंदोलन कर रहे हैं, उस आवाज को सड़क से लेकर के संसद तक शिक्षा व्यवस्था को बदलने की जो यह मुहिम, उसको बुलंदी से आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। और इसके तहत हम देश भर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसके बाद एक लीफलेट जो है, एक पैम्फलेट जो है हमने तैयार किया है, इसको हम मैक्सिमम विद्यार्थियों के बीच ले जाने का काम करेंगे।
1: देश की शिक्षा व्यवस्था और युवाओं से जुड़े मुद्दे को लेकर काकरोच जनता पार्टी भी अपनी आवाज उठा रही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में शुरू हुई काकरोच जनता पार्टी अब जमीन पर भी सक्रिय हो गई है। पार्टी लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है। दिल्ली के जंतर मंतर में इस संगठन का प्रदर्शन पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है। देश के जाने माने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक इस प्रदर्शन को अपना समर्थन दे रहे हैं। सोनम ने 28 तारीख से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने की घोषणा की है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्वरत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
0: तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे भारत से ये रिपोर्ट। और इस बीच हमारी श्रोता रमा जी ने कुछ जगहों के नाम लिखे हैं, जैसे उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर, कोलकाता, यानी ये जगह जो अक्सर हमारी फिल्मों में दिखाई देती हैं और अच्छी लगती हैं। इसी तरह से ब्रिस्बेन से हमारे साथ जुड़े हैं कैलाश जी। उन्होंने याद किया है कि कश्मीर जो है ना, उसका नज़ारा देखने में उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और हमारे श्रोता कैनबरा से थीरू जी ने बिल्कुल सही जवाब लिख के भेजा है कि जो गाना अभी इस रिपोर्ट से पहले आपने सुना था वो था फिल्म लम्हे का। कलाकार थी श्रीदेवी और उसका फिल्मांकन हुआ था राजस्थान के सैंड ड्यून्स पर। हेमलता जी, आपका भी संदेश मिला है। तो कार्यक्रम के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है, आपकी राय और भी हमारे लिए मायने रखती है, इसलिए अपनी राय भेजते रहिए और मिलती हूँ आपसे इस अंतराल के बाद।
10: AI is taking over the internet. Wrong answers, made up facts. You ask a simple question and get a generated essay nobody asked for. Technology trying to decide for you and still getting it wrong. The internet didn't used to be this way. When you just want to search anything online and find what you need, Startpage is the private search engine that keeps it simple. Real links, less noise, and we don't keep track of what you asked. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
11: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
12: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top-shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price, one place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
13: अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुनने के लिए हमारी ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड करें। ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर मुफ्त उपलब्ध है।
0: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूँ मैं अनीता बरार। श्रोताओ, आपसे जानना चाह रही हूँ कि भारत की ऐसी कौन सी लोकप्रिय जगह हैं जो फिल्मों में अक्सर दिखाई दे जाती हैं या जिन्हें देखकर आपको बहुत अच्छा लगता है, और हो सकता है कि उन जगहों को देखकर उसके बारे में आप पता लगाना चाहते हों और फिर वहाँ जाने का भी सोच लेते हों, क्योंकि फिल्में तो यही काम करती हैं ना कि खूबसूरत नज़ारे दिखाते हैं और फिर हमारा दिल करता है कि उन जगहों पर जाया जाए और उन जगहों को देखा जाए। तो बस आप ऐसी जगहों के बारे में सोचिए कि आपने जो फिल्में देखी हैं उनमें कौन सी जगह ऐसी है जो आपको याद आ रही है। आपके संदेश मेरे पास आएंगे, ये मैं उम्मीद कर रही हूँ, 04397997767 पर। और आइए चलते हैं भारत के एक शहर की ओर जो जब तब हमारी फिल्मों में दिख जाता है।

इस गाने को सुनकर अगर आप पिंक सिटी के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल ठीक, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जयपुर की ही। जयपुर जिसके भव्य महल किले बरसों से फिल्मकारों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे हैं। सिर्फ भारतीय सिनेमा नहीं बल्कि हॉलीवुड भी इसके आकर्षण से अछूता नहीं रहा, वो भी बार बार भारत का रुख करते हैं, राजस्थान और जयपुर की ओर। द बेस्ट एग्जॉटिक मैरीगोल्ड होटल इसका उदाहरण तो है ही। इस फिल्म में जयपुर जोहारी बाजार में त्रिपोला बाजार की तस्वीर दिखती है। तो आइए आज कुछ बात करते हैं कुछ उन फिल्मों की जिसके लिए जयपुर की लोकेशन को रखा गया। शुद्ध देसी रोमांस, ये फिल्म काफी हद तक पूरी ही जयपुर में फिल्माई गई। जल महल, आमेर किला, हवा महल और जयपुर शहर का माहौल इस फिल्म में देखने को मिला। और याद है आपको फिल्म रंग दे बसंती का गाना मस्ती की पाठशाला?

ये गाना जयपुर के नाहरगढ़ किले पर फिल्माया गया। ये किला बना था 1734 में और इसे बनवाया था महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने। कहा जाता है कि 1857 के गदर के समय कई यूरोपियंस ने इस किले में शरण ली थी। अच्छा, फिल्म बोल बच्चन को भी जयपुर के चोमू महल में फिल्माया गया था और इसी महल में फिल्माई गई थी फिल्म भूल भुलैया भी। ये चोमू महल कोई 300 साल से भी अधिक पुराना है और जयपुर का आमेर किला ये तो शायद आप सबने देखा ही होगा। ये जयपुर की शान है और इसी महल में फिल्म वीर को फिल्माया गया था। तो आगे बढ़ने से पहले क्यों ना फिल्म वीर के एक गाने की झलक सुनते चले।

और आपको क्या याद है गाना भोली भाली लड़की फिल्म सबसे बड़ा खिलाड़ी का? ये गाना फिल्माया गया था जयपुर के बिरला मंदिर में। इस मंदिर को लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहा जाता है और ये राजस्थान में मोती डुनगारी पहाड़ी पर बना हुआ है। सफेद संगमरमर से बना ये मंदिर बनवाया गया था 1988 में। और जयपुर के प्रसिद्ध हवा महल में फिल्माया गया गाना कोयल सी तेरी बोली फिल्म बेटा, अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित।

अपने विशिष्ट डिजाइन, लाल सैंडस्टोन से बना ये हवा महल अपने आकार की वजह से अक्सर कृष्ण का मुकुट भी कहा जाता है। और याद करें श्याम बेनेगल की फिल्म जुबैदा, जिसे फिल्माया गया था जयपुर के नारायण निवास महल में। जनरल अमर सिंह द्वारा इसे बनवाया गया था 1928 में और अमर सिंह ने अपने पिता का नाम इसे दिया। अब आजकल नारायण पैलेस एक होटल में बदल गया है। पहेली और लम्हे में जयपुर और राजस्थान का अनोखा रूप दिखता ही है। और जयपुर शहर से कुछ दूर बाहर है आमेर किला, जहां पर फिल्म आई गई थी, फिल्म वीर, जिसकी बात हमने पहले की, और फिल्म जोधा अकबर। आमेर किला जयपुर का सबसे पुराना और सबसे लोकप्रिय किला है और इसे बनवाया गया था 1592 में। तो ये तो आप जान ही गए कि हमारी फिल्मों के लिए जयपुर और राजस्थान कितना लोकप्रिय है। और अब आइए सुनते चलते हैं फिल्म जोधा अकबर का ये मधुर सा गीत भी।

श्रोताओं, जानना चाहूंगी कि कैसे लगा आपको आज तक का, अब तक का कार्यक्रम? क्या ऐसा रंग लिए कुछ जगहों के बारे में आप आगे भी सुनना चाहेंगे, जिसमें उन जगहों की खूबसूरती की बात तो हो, यानी फिल्मों के गानों के साथ साथ आप उन जगहों का आनंद भी लेते चले और उसके इतिहास का पता भी चलता रहे? तो मुझे आप अवश्य बताइएगा कि आपकी राय क्या रहेगी। और हाँ, इस बीच हमारे श्रोता ब्रजेश जी को आज याद आई है बचपन की भी। कैसे? वो यूं कि मुंबई के गोरेगांव में था छोटा कश्मीर, जहां 80 और 90 के दशक में शूटिंग हुआ करती थी, है ना? क्या आपको पता था इसके बारे में? इसी तरह से कई ऐसी जगहें हैं जो एक नए रंग को लेकर कर दी जाती हैं, जो असली में नहीं होती हैं, लेकिन हाँ, वहाँ सेट्स लगा दिए जाते हैं और उसकी शूटिंग वहाँ पर, लगता है कि हम उस जगह पर हैं जिस जगह की ये कहानी की बात हो रही है। अब चूंकि आज बात हम कर रहे थे जयपुर की, राजस्थान की, तो उसी प्रदेश में यानी राजस्थान की ही लोकेशन पर एक फिल्म बनी थी। अब उस फिल्म की बात तो मैंने की है, जब मैं जयपुर की बात कर रही थी, तो याद कीजिए उस फिल्म का गाना। याद क्या कीजिए, बल्कि सुनते चलिए।

श्रोताओं, हम सबके जीवन में यूं ही खनक बनी रहे, खुशियां बिखरी रहे, बस इसी कामना के साथ आपको इसी गाने के साथ छोड़े जा रही हूं। अगली मुलाकात तक के लिए आपको अनीता बरार का प्यार भरा नमस्कार।

बच्चन बच्चन बच्चन बच्चन बच्चन बच्चन पार्टी।

0: Handy,
1: your news from here
2: and hits from home. SBS South Asian.
3: असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा हो।

करके सजाएंगे। रात से हो गया दिन, पी के वोड का कोला जिन, बेबी बॉडी को कर ले स्पिन, जैसे मछली तड़पे पानी बिन, दिनक दिनक धिन।

सियार जैसी होशियारी फिजूल है, तेरा ख्याल ठेकेदार है तू वक्त का, बदल के रहता है ये वक्त का उसूल है। हरकतों पे कब तलक मेरी नजर रखेगा तू, करते करते पहरेदारी एक दिन थकेगा तू। मैं मगर नहीं थकूंगा, फैसला ये है किया गलत को भी सही तरह से।

0: लो, सास के संग ले लो, अपनों के संग पराए के संग खास हम खास की ले लो, इसकी फोटो उसकी फोटो एल्बम में तक देना, मेरी फोटो छुपा के सबसे लॉकर में रख देना, जो अगर किसी की नजर पड़ी फोटो पे तो सुन
1: थप्पड़ मारो।

काटे काट मेरे दिल पे जुबान है, भेद दिल ये ऐसा कमाल है। सरा पूछूं आज किसका ख्याल है, रेतों की रानी है किससे कमाल है। सुरमय भरी वो है बला, देख के उसको जमाना जला। माया का जाल है उसकी कला, उसके इशारों पे मैं हूँ चला। जब वो चले संसार झुके, जब वो मुड़े तरनी बहे, जब हाथ उठाए आंधी रुके, जब पल के झुकाए तो वक्त रुके। डरता करता फिर भी है मेरा मन, नाम सुन के बढ़ जाए धड़कन। मिट्टी पे पड़े जब उसके कदम, करते सख्त जमीन

समंदर के जैसे बढ़ती लहर, बवंडर के जैसे ढाती कहर, सोने सा चमके उसका बदन, छू दे तो अमृत बन जाए जहर। असलिया चेहरा उसे सब है पता, चाल है गहरा उसे कुछ न छुपा, दिल है जो ठहरा उसे नहीं है पता, क्या तेरी माया जरा मुझे भी बता। ढूंढू मैं उसको कहां, होठों पे जिसके लिपटा जहां, इतना दर्द क्यों मैंने सहा, जब मिलने ही थे दोनों जहां। रुक गई मेरी सांस भी, महसूस करने की आस भी, खुल जा मुझ में जैसे चाशनी, कट गई ये साली रात भी।

0: SBS South Asian. Your news from here and hits from home.
1: अरे भाई, मन्ने एक बात बता। थाम पंजाबी लोग दारू कित कित पी रहे।

कुछ ऐसा कि मैं बाकी सब लड़कियों के बारे में सोचना छोड़ रहा हूँ। माना कि थोड़ा बिजी हूँ, तेरी मेरी शादी के लिए मैं पैसे जोड़ रहा हूँ। कब से करूँ तुझको मैं चेस बेबी, दिल में मुझे दे दे थोड़ी स्पेस बेबी, ना मुझ पे कोई मीटू वाला केस बेबी, शरीफ हूँ मैं।

feel a heart. Yeah. Oh, yeah. Feel.

message, eh?

SBS South Asian.

के नी तैयार किथे चली घर तो बाहर तेनू की दा इंतजार बेबी गर्ल बेबी गर्ल।

0: South Asian.
1: Listen on DAB Radio,
2: smart speakers, or the SBS audio app.
3: बड़े कमबख्त हो आप नमाज के वक्त पे याद आते हो बड़े कमबख्त हो आप नमाज के वक्त पे याद आते हो अगर आपको ये लगा तो बिल्कुल गलत लगा कि आप खुदा के बाद आते हो कि आप खुदा के

जब प्यार था तब बात और थी, अब तो आप व्यापार कर रहे हैं, तभी तो जाते वक्त नुकसान नफा बोल दिया था। आप कभी अपनी कमियां ही नहीं बोले, वरना खुदा के सामने कबूल है तो तीन दफा बोल दिया था, तीन दफा बोल दिया था। जैसे हमें कोई नहीं मिला, आपको भी सभी नहीं मिलेंगे। खुदा हाफिज़ औजला जी, आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं।

बहुत गौर से सुनिए आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये एक अतरंगी भूत की कहानी, कभी नहीं सुनेगी आप ऐसे कहानी। नानू के पीछे पड़ी है ये भूत, उसके बिस्तर में उसको बता दे।